0: ओए तारजा बाबी।
1: अरे जा रे शराबी, क्या हो राजा?
2: गली में आ जा।
3: होली रे होली,
4: भांग की गोली वो नखरे वाली,
1: दूंगी मैं गाली।
2: अरे रामू की साली।

मैं जरा अपने गुरु से ठीक से सीख लूं, फिर मैं आई एम सॉरी माय गुड फ्रेंड लेट मी लर्न इट प्रॉपरली फ्रॉम माय गुरु देन आई विल टीच यू।